0: 오르지 다 남기 콜링 좀 타고 나타난 돈도 좀 이러와 드릴 롬죽 때도 오늘 까마티 까마는 때 그거 챘는 요르죠 도시 콤을 탄다 저한테 매지 간 저한테는 저한테는 저랑 같이 되었나 뒤로 바꿔 그 좀 때 서로 다 도시서 룩디서서 다 뜻은 뭐 파는 분들 그러면 분들 개한다 담내라 말아 또 다 자다 던졌을 땅서 되지 전에 도시 더 되나 무슨 그 힘을 내는 모자서서 가서 니서 저랑 가서 숨사 총간 니 다 던르시서 대야리 다 디난들한테 저한테 숨을 세는 라 파드 무슨다 죽게 내티 만나서 로마 숨조조를 또 속에서 막 희게 요리로 하장 그 전당 저르게 저한테 반가 좀 잡다던 딱 무슨 그 저한테 이렇게 잡 숨으로 좀 다 용바들 된다 강라 강산다 대사 조보도 무슨 때리 때리 향도 오늘 저한테 시다 총간 시다 니르콘 베드 야신다 디기르쇼 치츠르디온 무슨 그 페르게든 소신주 군동을 결결을 다 야지다 That talks is of thing that Madon told Angeliga and Tutan Nina Mug pardon, Marit Tundi to Marie, Tundi Liga, Tundi Yamnida, Legan Tadal, Dotsa checked the disogata, the Supolam Rogu, Sata, Tetans of that test is all legata, sorry. That did not attend Uchorg Ligat Leon Rams, Uchorg Ligat Leon, Uchorg Satin Ligat, and Yamir in the Kosog Kasi, Talente on a Kumarti Yalamato, the Torn Roger Critic, Kungasor Pendata, San Babono, Uchorg Gantin at the Penna, Niton Jim, Juru, a Tilomjura Utason de Trombare, Yena Tochi Girkomus, Rora, Matamato, Ulo Chap Dele, the Tinanter, Mexico Gangs in Kim Santin, Trombare in Troma, Kirin. Yena. 김상은 나로도 좋아 자지 물러가 챘겠다 초에 관리데 에 국장 나서 때디디 좀반 제게리아 강산 강산서 좀 자자리 홍기로 나서 나서 맨날 이제 옛날 또 강한테 맞아 고사노
1: 그래서
0: 교회는 나서 관리 장아 잡디디 좀반 제게리 자 이제 좀 됐잖아 다 던류게 너 팬디로 쳇미세 놈 년대부터 다 던러서 그래 Toxizo Tatar, Patal Penangasog, Tarsuk Tonyong Ganina, and Yam Depti did only record set up the Orava. Oh, yeah, Lomju Latina and Chuk Torti Huk Chet Tony, Lomju Parts after the only Tiganatra lets in your Huk Chenchi to Yandi and Yasan Lomju Donald Torgi the Hyagi to Lugania, Pendishan Bongra, Toxi, set up Sarvating Nongosog as a Tonin Pergida, Tat and the Tons of Targidon,
1: Tatar,
0: Nigu Ganita, the Kulon Huk Chenchi of Tugna. मर्ग लखियो देरी के लखी के गांडी तक ड्रोन द पेरी जो मरे
1: तो
0: पेंसिंग के गांडी तो हिंट ऑफ चाहिए तो केसिंग गांडी जोगी द टील निजे के गांडी ह्यूप चेंज जो टील द लाग लाग पार्ट द तारों में सो के रोपे के साथ गुले टोने के टील निजे के लिए गांडी केंच आलम रोल टील के गांडी ताले चाटा अफसर बात आ Rajor Payer Cabi, she so that your mother Doma Boro, character to the Doma Boro, that to be Kirim Malita, Juari, she so take Tonkin Peshu Chetan, to be Kirim Malita, Balen, Bed, Charge Servant, Lok Toshu Chita, Tashi, Muzok, Tons of Tarjiki, Nanim, Mixigli, had a late public that, and Yamek Muzok, the Tonta, not to take it, that the Penangos of Hyoma, Tes, Yamat, that to make a want of the Tatos in Romu Tonyoma, made you honor the Soka Gunny, the Nation. Koshi si nolis tatun de chungti tatun de sar de liga sar bali so bed zeng de tsegi long ni ning so ge zeng ro pe ge tong kong de ya sha ya tan ba ta tu pe shu te li ge zeng char gen rong de ya ta wan tong ro te de tun du ge char ya de de la par de so ge zeng yam yer ge le ge ge na ta la ta tan da zo wo li dong ge de ge bo jang cha ro wa ta de zo na ni ga ling ge sa ma ge po ni zeng ne Rinneke, Chutzig, Zava, and Damada. Nina, the Gary, the Cinderbash, and Kasha Sada, the Sidney Egital and Charge Serva, Te, Tani, a Talo Trashemo, Nan, Sun Partula, Musun on the Julia Sisoya. They give the money, Trunzo, the Kogliga captives also, Yogin, Zil and the Tatanga Mazak Kesara, Tatanga Mazak Kesha, and you think Tatunzo, the Sundan Trubu, the Tongue. So, so, Tina Terangay, Charging on Argota, some two wrong. Last week at Malawi,
1: last
0: lap do on the Takosotong Yard that are fusing the latter chicken at Yapodase. Three takes she only read Madayan, Tanyan Sos and Sos of Tongo Zerxitan, the Chasalian, Yamne Glindy Lens of Sagoyo, the Saman Sot. 타코서 섬에 이야다세 다 다네 튼디고 샤다드 니그 무소가 다 투페쇼나레 로레리게 차르쳔게 고드솔이 뒤소 그 템드리 나서 데메쇼나디 티다 쇼나레 페쇼나레 캬레 캬레 티티투레 다 티티투레 무소 티리가데 크레말타 락타르시기 차르게조 땡산타 크레말 조차서 다 이야서 다 벤세 무소 때는 총섭 타르지기리게 간 희옥 땡데 돈이 삼아 즉다도 런좀 벤디 돈이 들리가데 리톤나 동기로와 Ниче дон манцоп за лопчаче мойна лигу гганина. Ахио ниче за трин картан лигара ги ман кача сан ди мари де сам нон нам за рани ги тонцо ги лига трабле ди нин косо ги э лига мара ги не дон. Лигу те тасо то бирон. О та тен ди ги сам нон тан со ток чи зу нин де те та та лам зон ли мете ти на та ни лак тар чи ди на те то та чи дон цен нам со ги лак пар де ням нер ги лига лигу дон нор дон ги лига кан кай ти че жорон. ती गांतरा ले चेंग गसोगे बेद तने चरगी तने जिया सोबता ट्रांसफर तरगी के गान मन तुय सोबता तोलेगन परगी तो तो रो पेरी ता तंदे छि सोब क्योंगे से जा सम सम से तंदे से दे होता ती से मा मसो मुर सा यम से ट्रोंदार बा डों लोग मारे तो सो लेन रेंडर सिंग दो ना ता तालेन रा दे ने जान चुडुक सा तरा ती पे ता तालेन कुलों बेदिंग क्यूक चेंज चले ता कुलों ह्यूक चेंज दे मानसो ह्यूक चेंज या सा जा ह्यूक चेंज मे जा ह्यूक दे तसे दोनो ता मुक्सु के शाता अमचार के तंदे रे ता क्यों सो गो ह्यो गो रे ता पेजा ता करा सा नो ता मा दे गा दे रो जे ने छाबसी के छांग से नी ने जे गांग दोनो छु सो कना बा सम ने से मी के चिंग रंग दो मर ता सो करे मर ते या पो हली के छे ता ने से ह्यो गो रे दे कुनो ता मानसो सा मे के गांग दोनो मुसो मानसो ते नी रा मा जे ला ता ता से जे ला ह्यो चे से सुन तेरी ह्यो ली मे ते तंग सा फोंडा ले रेंदुर के अब दोनो ता जागा रंबा थांबो रो दुई ना से टॉप्स ता
1: ते माजे में जोंदे टोंजु
0: माजे माजे टॉप्स ता जागा रंबा चुडुक टॉप दोनो टोंदा तो यसे टॉप्स रो ता ता सा मा हिन सोंदे ता हिन सोंदे ना से छि जों छि हाला ओली दे रे छेंबो आ ते हिन के ते जे सो के एक गान ते टोंजु ले हि ते का बे सों बे दे हिप छे छि सो के ता तो छि उन दोन ते तन रे हिन जान छि कि ते नु के गान ले ते मो सु के से सान हि दरवार वा ता ते के गान ले बे दे मोन तो के लिखा तो लेओ दा तसे दोन मुसु दु मोर सागन जी माई ता बेद त पनिजों के ट्रोंग तो ता ने जी पागा हिंग त हिं दे सुप्ता नेंग ता रो ओ ता त त तरन का तन न्यम ने बेद ता न्यम ने तो छे रे दो ये ना दा न्यम ने तो छे न छा मा ले त जी खि जी लो मेन जी ना ता त हिं का हिं दा ना रे पागा जों खों ने न मुसु ओ सा ले बेद त गोन गोन दी ता ओंग जी रो ता न्यम ने दी दी चोक छि ग्रे ता त दी उंगली के जुनम ना ला छे ता छा मा ता ता मुसु लम दो तरा हिं छा ओंग जी मा ये ना मुसु ग ना तरा ला थेंग ता बो ता मुसु ग थे बे ग का ने दे थो बे ग दुम दे ते नि बो त ह्यो दुम दे ग ना तरा ता तो बो ह्यो जी ते यों बा मुसु न सि ओ रप ता जो जी तो बो चले मे ता त मा सो ग छि दे का ने ते ता छु थोब दे ग ने दो ओंग जी रो ताज़ पेस चौंडा तो सीख सुनो गाज़ चेव के ट्रोंबे के पंजोर दाबो मटेरियल के पंजोर तो दाबो टेप डोले ओ नीन गाज़ोर के कंट्रोलर ने ता रानी के सिस्टम चेंड लीगे के गाली का तो ठीक डल ताज़ चौंडोले ता टीचे मांगो सो के तो पैना मेन कंट्रोल कर ता तुम सांते जर्कअप कर रिचे बोल मेन कंट्रोल हिउचे तो रुक्यो सिगो में दवा मैं मांगो सो नियम दे ब्रिचा ते ने ट्रोंबा का ही टच्चअप चुन रोगल दिन नेपाल सोख जो मिंग औरे सोख जो मिंग माँ बोले ता ते मुझे नियम दे के ता माँ पेरो ने पेरे चेक होते रो ता ते तुम माँ तो ले टच्चअप चुन रोगों में ते तुम बेड नियम ये की योर सो ता तेरी को ने वहाँ तो ता दिया का भी यहाँ पहुँचो से वो दोषी सो तो यहाँ सर तो लोरम ता मैं कहना दे दी लंबा पोहियो दी दी कौन है वो जो माँ ओ ये ना तो जान जान रहनी रे नहीं क्या तुम लोग तो कांगे तो उधर ही हैं तब तो चेतन तो उड़ा रही
2: मांग यों शंजू लंबी तो शेट बात जो ना शुजी नाम का लाज़ पंडित न्याजी दी रे माजे ये दी मांग चो चो ये यो यों दी डांग शबा चुन दी शेप 大家小众中的，我来看农民年龄看个天气、气候、人员，也都接近着约不是。 我呢，种草几个我提当样呢？香蕉你吃没那几个月呢？老三刚才一讲的，有的芒草全用了偏僻小娃子，今朝新年周给谁呢？敌人，白将农村年轻来讲，看给农村家，俺当你就比小浪西边来在呢？白将拿起种钱，半罐子下种香，来看农民香蕉你吃没那？南卡拉第一个写的，问题的第一个呢，看到下几元币，前几三把，该是学。
0: 다 망조 배관이 저거 냠뎀다도 뒤탄다 냠뎀은 건치 즉 체중 간도 있나다 탱 담보 냠뎀데 양 딱래든 좁삼나 탱 담보 랑게 랑이게 삼나다 랑이 리드 샘트 잡아 되는 메일이다
1: 그래서
0: 땅 땅 하루 탱 담보 케빈 더